सब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपन वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई।

0: मेरी बॉडी तो देख रही पागल हो जाएगी।
1: सिंगिंग से गल देसी घ्यो दीवे वालू।

सच्चा अमर गोविंद दा अमर मैंने हुकुम सुन गुरु प्यारे सत संगत मेला पकार अरे हर गुर गोविंद ते आइए कदों हर गुर गोविंद ते आइए सज अमृत वेला वाह वाह।

आपे बहुत रंगला सखिए मेरा ला अखर ने गुरु नानक साहब दे ते अर्थ किते ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी इनू कहंदे ने गुरगद्दी और एक रूप एक रूप। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी गुरियाई दे की मैं किशमे सुनावा। तीरमलिया ने सतगुरु दी बीर ना दित्ती, आपने पाठ रखना सी, पांच सिख कले आख्या जिन्नी भेट आखोगे वह भी देंगे, दर्शन भेट भी तुहाडी कोलों भी देंगे और बहुत सेवा करांगे, सानू महाराज दी बीर दे दिओ। असी पाठ रख के गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा अरदासा करके सिखां नूं पाठ सुना के फिर वापस कर देंगे। उन्होंने मनिया ना, सगो मेरा मारिया जे तू गुरु है तो अपनी बाणी उचारण कर लै, ये मेरा मारिया। सिख आए, सिखां नूं वार्ता पुछी, उन्हें सारी दसी तो एक सिख रो पिया, कहन लगा महाराज उन्हें तो बड़ा भैड़ा अखर आख्या है, शक कीता है तुहाडी जात ते, उन्हें आख्या जी।

त्यागी और न यही महात्म में अवतारी उजागिर यान कियो। तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन।

सुन बेद बिरंत बिचार रहो हर जपन छाडो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्री।

अपने आप साजियाने आपे ही दम खलोवा आपे पट्टी कलमिया आप लिखन हारा हुआ सब।

0: जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुण गा जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुण गा गुण गावत ते पुत्र समय सच्चे के गुण गा गुण गावत तेरी
1: पुत्र समैल
0: बिनस जाए हो मैं दुख फैल जन्म कर्म

उठ पुहाओ को दौरियो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जाने हो।

सच्ची वड्याई आद और अंत तो एक गुरु दी वड्याई चली आ रही जिसनू के पट्टा ने भी बाणी दे विच फरमान कीता है के बसंत दी रितु दे विच जो खिड़े हुए फुल हन सारे संसार दे विच और समुंदर दे विच चल रहियां जो लहरां हन एना नू कोई गिन नहीं सकता। फिर भी जे कोई शिवजी दी तरह ध्यान करके बैठ जावे ते गुरु पासों बख्शां प्राप्त कर लवे ते एना पैंदियां होईयां बारशां दियां बूंदां दी गिनती कर भी लवे संसार दे विच जितने भी फुल हन उन्हां दी भी गिनती कर लवे ते समुंदर दे विच चल रहियां लहरां दी भी गिनती कर लवे मगर जो गुरु दे गुण हन उन्हां गुणां दी गिनती करनी असंभव है। पट भी फरमान करदे हैं।

सतगुरु दा कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नू परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नू सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नू साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संशय दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है।

गुरु दी जय जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है। और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साई फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा साला बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नू फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साई फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नू परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है। और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नू पा सकदा है। साहिबां दा फरमान है।

जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिदे विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

फुल धरदे ते हो सकदा सी दुध डुल जांदा। गरीब नवाज पातशाह ने उन्हां नूं इशारे नाल समझा दिता भई हे फकीरो हे पीरो जिवें ए दुध उपर चंबेली दे फुल दा कोई असर नहीं होया दुध उदा ही है मैं तुहाडे विच आ के ते ए तुहानूं महसूस नहीं होण देंगा भई मैं इत्थे कोई रहण आया या पीर बनन आया नहीं मैं ते

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोट महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुक्राने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख छमे दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने सीपा सलार नू हुकम दिता भाई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनू भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

जंत पाए कै संभाले सरना जिन करते करना किया चिंता विकरणीता सो करता चिंता करे जिन अपाया जग तिस जुहारी साथी।

कोई गावे कोई सुने, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है या सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनता है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृतमयी बाणी, जिस बाणी प्रथाएं गुरु पातशाह कहते हैं

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नू दित्ती है मेर कीती है पातशाह ने आख्या भाई कोई सुने कोई गावे कोई उपदेश करे किसी भी जाति का होवे कोई नीच कोई ऊंच नहीं बल्कि सारे का सत्कार है इस